0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 21 जून 2026 की रविवार वाली शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरा गिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज चलाएंगे सुनिधि चौहान के गीतों की रेलगाड़ी. आज बताइए मुझको कि आपको सुनिधि चौहान के कौन से गीत पसंद है. 04397997767 हमारा नंबर है और क्योंकि आज है योग दिवस तो उस पर भी चर्चा करेंगे. कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे आज के संक्षिप्त समाचार. इसके बाद करेंगे चर्चा कैसे आप फ्यूल पर अपना खर्चा बचा सकते हैं. फिर प्रस्तुत करेंगे सप्ताह भर की खबरों का एक फटाफट रैप. फिर बात होगी योगा डे पर एक अनोखे तरह के योगा की. और इसके बाद SBS फ्लैशबैक में आपकी मुलाकात करवाएंगे कैनबरा स्थित एक 71 वर्ष के योगा इंस्ट्रक्टर से. इसके बाद रहेंगे आपके पसंद के गीत. तो आज आप मुझे बताइए कि सुनिधि चौहान का कौन सा गीत आपको पसंद है. 04397997767 हमारा नंबर है. फिलहाल आइए चलते हैं संक्षिप्त समाचार की ओर. पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ. इस सप्ताह जारी होने वाले आर्थिक आंकड़े ऑस्ट्रेलिया में महंगाई की स्थिति पर खासकर तेल और डेयरी उत्पादों की कीमतों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत देंगे. ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बुधवार को जारी होने वाले आंकड़ों से उम्मीद है कि मई में मुख्य और अंतर्निहित मुद्रास्फीति की हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई होगी. इसकी एक वजह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ा असर माना जा रहा है. विशेषज्ञों की नजर इस बात पर रहेगी कि तेल, गैस और फर्टिलाइजर्स की बढ़ती हुई लागत का असर व्यवसायों ने उपभोक्ताओं तक कितनी तेजी और कितने व्यापक स्तर पर पहुंचाया है. डेयरी उत्पाद, विशेष रूप से दूध, इस रुझान का शुरुआती संकेत दे सकते हैं. नाशवान वस्तुओं की कीमतों में आमतौर पर सबसे पहले बढ़ोतरी दिखाई देती है और सुपरमार्केट के होम ब्रांड दूध की कीमतें अप्रैल के अंत में ही बढ़नी शुरू हो गई थी. वहीं दूसरी ओर न्यू साउथ वेल्स सरकार ने घोषणा की है कि मंगलवार को पेश होने वाले राज्य बजट में प्री फैब्रिकेटेड और मॉड्यूलर घरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ कई नई साझेदारी के लिए धन आवंटित किया जाएगा. सरकार की प्रस्तावित मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इनोवेशन फैसिलिटी का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले घरों का निर्माण करना, निर्माण में लगने वाले समय को कम करना और लागत घटाना है. उद्योग संगठनों ने इस योजना का सावधानी पूर्वक स्वागत किया है. उनका कहना है कि आवास आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तो है, लेकिन निर्माण क्षेत्र की अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए भी समानांतर प्रयास जरूरी होंगे. कम्युनिटी हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन न्यू साउथ वेल्स के मुखिया ल्यूक एक्टरस्ट्राट का कहना है कि मॉड्यूलर हाउसिंग आवास संकट के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह अकेला समाधान नहीं है. वहीं फीफा विश्व कप में पैराग्वे के खिलाफ होने वाले अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम सॉकरूज की नजरें नॉकआउट चरण में जगह पक्की करने पर टिकी हैं. कोच टोनी पॉपोविच युवा आक्रामक खिलाड़ियों जैसे नेस्टोरी रैंकुंडा या मोहम्मद टुअ पर भरोसा कर ऑस्ट्रेलिया को आक्रामक शुरुआत दिलाने का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि वे ऐसा करेंगे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है. तुर्की के खिलाफ 2-0 की जीत में पॉपोविच की टीम चयन और रणनीति की काफी प्रशंसा हुई थी, लेकिन अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में उनकी अधिक सतर्क रणनीति सफल नहीं रही. ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. अब पैराग्वे के खिलाफ मैच में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पॉपोविच फिर से युवा खिलाड़ियों पर दाव लगाकर आक्रामक फुटबॉल अपनाते हैं या सावधानी भरी रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं. और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन ने रशिया के पश्चिमी साइबेरिया स्थित ट्यूमन क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ये क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन ने ऐसे नए लंबी दूरी के ड्रोन विकसित किए हैं जो 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अभियान चला सकते हैं। पिछले कई महीनों से यूक्रेन रशिया के भीतर मध्यम और लंबी दूरी के हमलों का अभियान चला रहा है। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य रशिया का तेल उद्योग रहा है ताकि युद्ध के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की उसकी क्षमता को कमजोर किया जा सके। और अंत में खबरें भारत से। भारत समेत दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित मुख्य समारोह का नेतृत्व किया जहां लगभग 35,000 लोगों ने योग किया जबकि शहर भर में करीब 10 लाख लोग विभिन्न योग सत्रों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है। देश भर में रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों में भी सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर के टेक्सास तक योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया। योग गुरु रामदेव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों से बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित योग को अपनाने की अपील की। इसी के साथ 21 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं कि कैसे आप उन विकल्पों को चुन सकते हैं जिनसे आपकी ईंधन की जो कीमतें हैं यानी जो आपकी ईंधन की लागत है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, आप उसको कम कर सकते हैं। कौन से ऐसे विकल्प आपके पास मौजूद हैं, क्या ऑप्शंस हैं, बाजार में ऐसी क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं जिनसे आप बचा सकते हैं पेट्रोल और डीजल का खर्चा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फ्यूल एक्साइज की छूट को भी एक महीने के लिए पार्शियली बढ़ा दिया गया है कि भाई वो रिलीफ अभी भी मेंटेन किया जाएगा। इस पर और चर्चा करेंगे न्यूज रैप में जो कि आएगा ब्रेक के बाद, लेकिन अभी फिलहाल चर्चा करते हैं उन विकल्पों पे जो बाजार में उपलब्ध हैं आपके लिए पहले से ही, जिनसे आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पैसे बचा सकते हैं। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और इसका असर ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार दिखाई दे रहा है। खासकर इस महीने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने के बाद कई ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के लिए यह आर्थिक दबाव अब दोहरा हो गया है। लोगों को एक ओर पेट्रोल पंप पर अधिक कीमतें चुकानी पड़ रही हैं तो वहीं दूसरी ओर किराना, किराया, होम लोन और रोजमर्रा की जरूरी चीजों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड फ्यूल इन फोकस के इस एपिसोड में हम उन मुफ्त और स्वतंत्र सेवाओं पर नजर डालेंगे जो लोगों को आर्थिक तनाव से निपटने में मदद कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आइए सुनते हैं अब ये अंश। मेलबर्न निवासी इम्तियाज अहमद आईटी क्षेत्र में फुल टाइम नौकरी करते हैं, लेकिन परिवार का खर्च संभालने के लिए वे सप्ताहांत और शाम के समय टैक्सी और राइड शेयर वाहन भी चलाते हैं।
3: One job is not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
2: अहमद का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतें समस्या का केवल एक हिस्सा है। कम होते यात्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा बढ़ाया गया कमीशन और रोजमर्रा के बढ़ते खर्च ड्राइवरों के लिए गुजारा करना और मुश्किल बना रहे हैं।
3: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
2: अहमद अब नेशनल डेट हेल्पलाइन से संपर्क करने पर विचार कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया भर में उपलब्ध एक मुफ्त, स्वतंत्र और गोपनीय सेवा है। ये हेल्पलाइन आर्थिक तनाव का सामना कर रहे लोगों को वित्तीय सलाहकारों से जोड़ती है जो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं और उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करते हैं। नेशनल डेट हेल्पलाइन की विकी स्टाफ कहती हैं कि अब कई लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और खाद्य सामग्री जैसी जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, जिससे अन्य आवश्यक खर्चों के लिए कम पैसा बच रहा है.
4: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
2: Staff ka kehna hai ki bahut se logo ko ye pata hi nahi hota ki unhe bank ya rin dene wali sanstha se aarthik kathinai sahayata, yani financial hardship arrangement, mangne ka unhe adhikar hai.
4: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
2: स्टाफ का कहना है कि सही जानकारी और व्यावहारिक विकल्प सुझाने के लिए वित्तीय सलाहकारों को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझना आवश्यक होता है.
4: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
2: National Debt Helpline से संपर्क करने के तीन तरीके हैं. लोग 1800-007-007 पर कॉल कर सकते हैं, ndh.org.au वेबसाइट पर जा सकते हैं या वेबसाइट पर उपलब्ध लाइव चैट सेवा का उपयोग कर सकते हैं. जो लोग अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हैं, उनके लिए नेशनल डेट हेल्पलाइन कॉल के दौरान दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर सहायता की व्यवस्था भी कर सकती है. स्टाफ का कहना है कि मदद मांगने वालों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए व्यस्त समय में कॉल करने वालों को इंतजार करना पड़ सकता है. लेकिन उनकी सलाह है कि यदि पहली बार संपर्क ना हो पाए तो लोग बाद में दोबारा कोशिश करें या लाइव चैट जैसे दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करें. लोगों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वे सामुदायिक संगठनों के माध्यम से उपलब्ध अन्य मुफ्त सहायता सेवाओं की जानकारी लें. इनमें द सैल्वेशन आर्मी की मनी केयर सेवा, कुछ एंग्लिकेयर वित्तीय परामर्श सेवाएं, सामुदायिक कानूनी केंद्र, मॉब स्ट्रॉन्ग डेट हेल्प और फाइनेंशियल राइट्स लीगल सेंटर शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड फ्यूल इन फोकस के इस अंश को SBS न्यूज से साहिल मकर और SBS हिंदी से प्रशाली जैन ने प्रस्तुत किया. और संच के बाद कार्यक्रम में वक्त पहले अंतराल का. अंतराल के उस पार लेकर के आएंगे सप्ताह भर की खबरें फटाफट न्यूज रैप में. लेकिन आपसे आज मैंने पूछा है कि सुनिधि चौहान के कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि आज उन्हीं के गीतों की रेलगाड़ी चलाएंगे. इसी के साथ आज है योग दिवस भी, तो आप मुझे ये बताइए कि आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर योगा आप कैसे मना रहे हैं. 04397997667 हमारा नंबर है. बस यूं गई और यूं आई, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर.
5: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
6: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
7: SBS Audio.
8: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
9: यहीं ज्यादा दिया. जुम्बे हाल में.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
14: Far from the partisan politics.
15: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
16: sbs.com.au/audio.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay, yay!
3: 767 पर इसी के साथ आज मैंने आपसे पूछा है कि भाई सुनिधि चौहान के कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको बहुत पसंद हैं। मुझे जरूर बताइए, आज गीतों की रेलगाड़ी उसी से चलाते हैं। 04397997667 नंबर है। और अब आइए सुनते हैं सप्ताह भर की खबरें इस न्यूज रैप में, जहां पर हम करेंगे चर्चा देश और दुनिया और बहुत सारी और चीजों की। शाली जैन और सप्ताह भर का न्यूज रैप हाजिर है। फेडरल सरकार ने ईंधन की कीमतों में राहत की मियाद बढ़ाई। नेट ओवरसीज माइग्रेशन लगभग 3 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम में चोट के दौरों से बढ़ी चिंता। और अब सप्ताह भर की खबरें विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत की उम्मीद रखने वाले ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने ईंधन उत्पाद शुल्क यानी फ्यूल एक्साइज में दी जा रही राहत को 1 महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि अब बचत पहले जितनी नहीं होगी। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने घोषणा की है कि जुलाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूर्ण दर की तुलना में 16 सेंट प्रति लीटर कम रहेंगी। फिलहाल उपभोक्ताओं को 32 सेंट प्रति लीटर की राहत मिलती है। ये कटौती 3 महीने पहले पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने और वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बाद लागू की गई थी। मौजूदा छूट 30 जून को समाप्त होने वाली थी, जिससे फेडरल बजट को अनुमानित 2.9 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के राजस्व यानी रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी का कहना है कि हाल के दिनों में पेट्रोल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कई परिवार अब भी बढ़ती लागतों के दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राहत को सीमित अवधि के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर पहली बार H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एस्पिरेंस शहर के पास एक दूरदराज समुद्र तट पर बीमार अवस्था में मिले ब्राउन स्कुआ पक्षी में इस वायरस का संक्रमण पाया गया। एस्पिरेंस पर्थ से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों, पर्यावरण संरक्षण समूहों और कृषि क्षेत्र से जुड़े संगठनों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में H5N1 के प्रकोप के दौरान बड़ी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हुई और कुछ प्रजातियों की आबादी में गंभीर गिरावट दर्ज की गई। UNSW सेंटर फॉर इकोसिस्टम साइंस की इकोलॉजिस्ट सिमोन गोटा का कहना है कि ये निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और सुरक्षा उपाय पहले से मौजूद हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में नेट ओवरसीज माइग्रेशन लगभग 3 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2025 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन 3,01,000 से थोड़ा अधिक रहा।

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: राशि हर तिमाही के बजाय वेतन भुगतान के 7 दिनों के भीतर उनके सुपर खातों में जमा करनी होगी। ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार लगभग 40% व्यवसाय पहले से ही तिमाही के बजाय अधिक नियमित अंतराल पर सुपर भुगतान कर रहे हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। ब्रिटिश अखबार दी ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्मर सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने और सत्ता हस्तांतरण की समय सीमा घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, दानदाताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं से बातचीत के बाद स्टार्मर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका पद पर बने रहना अब मुश्किल है। बताया जा रहा है कि स्टार्मर अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ अपने राजनीतिक भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं और अंतिम फैसला जल्द ले सकते हैं। हालांकि डाउनिंग स्ट्रीट के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री फिलहाल सरकार चलाने के अपने काम पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और अब खबरें भारत से सप्ताह भर की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह फ्रांस के एवियन लेबेंस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित नेता के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 16 महीनों के बाद पहली मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक असंतुलन और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। ईरान से जुड़े तनाव के बीच भारत ने संतुलित कूटनीति अपनाते हुए क्वाड में सक्रिय भूमिका जारी रखी, जबकि खाड़ी क्षेत्र पर अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना वाले ब्रिक्स के बयानों से दूरी बनाई। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में भारत को बड़ी राहत मिली। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौतों की रूपरेखा सामने आने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 80 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन सामान्य होने से भारत के तेल आयात और महंगाई पर दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी। घरेलू राजनीति में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। उनके 30 लोकसभा सांसदों ने अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की। नए समूह ने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया और वहीं सीमावर्ती राज्यों में भाजपा की बढ़ती राजनीतिक पकड़ के बीच भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ी नीतियों पर नई चर्चा तेज हुई। शिक्षा और डिजिटल सुरक्षा के मुद्दे भी इस सप्ताह चर्चा में रहे। नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद केंद्र सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। इस बीच भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक आयोजन का नेतृत्व किया। इस वर्ष की थीम स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई, जिसके तहत दुनिया भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब अंत में खबरें खेल जगत से। टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीतों का सिलसिला जारी है, लेकिन टीम की स्टार बल्लेबाज और विकेटकीपर बेथ मूनी की फिटनेस को लेकर कुछ चिंता पैदा हुई है। शनिवार को साउथैम्पटन में नेदरलैंड्स पर 98 रन की बड़ी जीत के दौरान मूनी 74 रन बनाकर नाबाद थी, लेकिन पीठ में जकड़न महसूस होने के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने नेदरलैंड्स की पारी के दौरान विकेट कीपिंग नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की बात यह है कि उनकी बैकअप विकेट कीपर फीबी लिचफील्ड भी क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण बाहर है। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने प्रदर्शन से विश्व कप की प्रबल दावेदार बनी हुई है, लेकिन विकेट कीपरों की चोटें टीम प्रबंधन की चिंता बढ़ा सकती है। इसी के साथ 20 जून 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप यही समाप्त होता है। और क्योंकि आज चर्चा हमारी जारी है, किसको लेकर के भाई हमारी चर्चा जारी है, सुनिधि चौहान को लेकर के मैंने आपसे पूछा है कि सुनिधि चौहान के ऐसे कौन से गीत हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए उनका एक ऐसा गीत लेकर के आ रही हूँ जो थोड़ा तो पुराना है लेकिन एक आइकॉनिक सॉन्ग है। उन्होंने इस गीत ने सुनिधि चौहान को सुनिधि चौहान बनाने में बहुत

0: और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। भाई मेरे पास आप लोगों के कुछ संदेश आए हैं जिसमें कुमार जी बता रहे हैं कि आज है उनकी नीस का बर्थडे। तो सबसे पहले तो SBS हिंदी की तरफ से उनकी नीस को बहुत बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। और आज वो वही पार्टी मनाने जा रहे हैं। भाई मैंने पूछा था कि आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे क्या कर रहे हैं, तो फिलहाल वो तो बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास प्रीतेश, शिखा, नीश और त्विशा शाह जी का संदेश आया है जो मुझे बता रहे हैं कि ये फिजा फिल्म का सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया गीत था। बिल्कुल सही। और आप लोग हमेशा की तरह, मुझे जितना पता होता है उससे ज्यादा ही आप लोग को पता होता है ना। मेरे पास एक और जन का संदेश आया है जो कह रहे हैं कि सुष्मिता सेन, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है तो मुझे नहीं पता कि वो संदेश किसका है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार करेंगे एक बड़े नए टाइप के योगा के ऊपर चर्चा। लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि भाई सुनिधि चौहान का आपको कौन सा गीत पसंद है, तो वो गीत मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। 04397997667 हमारा नंबर है। और कहीं पर आप आज योगा करने गए थे सवेरे, कहीं किसी सेशन में, किसी इवेंट में, बताइए हमको 04397997667 पर। एक छोटा सा ब्रेक, प्रशाली फिर से हाजिर होती है। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas,

0: y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by GEICO, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
5: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताज़ा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
6: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर, और हम चर्चा कर रहे हैं आज एक बहुत ही अलग टाइप के योगा की। भाई, ऑस्ट्रेलिया में पपी योगा और किटन योगा आजकल बहुत बहुत प्रचलित है। मतलब आप योग तो करते हैं, लेकिन आपके साथ साथ कुत्ते और बिल्लियां भी उस योग के सेशन में शामिल होते हैं। कैसे होता है ये सब कुछ हमने चर्चा की योगा पपी योगा का एक स्टूडियो चलाने वाली ठिया मारिया के साथ, और उनके साथ मेरी इस बातचीत को मैं आप तक लेकर के आई क्योंकि मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था ये कॉन्सेप्ट कि ये कैसे होता है। तो आइए मिलकर के सुनते हैं कि कैसे होता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीते कुछ सालों में योग के कई प्रकार प्रचलित हुए हैं। जैसे जैसे योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय होता गया, इसके अलग अलग प्रकार भी सामने आते गए। जहां पारंपरिक तौर पर अनुसार, अष्टांग, बिक्रम या हठ योग के प्रकार हुआ करते थे, वहीं मॉडर्न ब्लेंड्स के बाद यही योगा पिलाटेस, एरियल, हॉट योगा या पार योगा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा ही एक योगा का नया प्रकार है पपी योगा। पपी योगा के प्रैक्टिशनर्स कुत्तों के या बिल्लियों के बच्चों के साथ योगा करते हैं। न्यू साउथ वेल्स सरकार की विजिट न्यू साउथ वेल्स वेबसाइट पर पपी योगा को एक यूनिक ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस कहा गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के मौके पर हमने बात की योगा पॉज नाम के एक पपी स्टूडियो की सह संस्थापक टिया मारिया से।
7: आई थिंक It is a very Australian experience, and it is a unique experience in that case advertised by New South Wales government, because Australians are very community oriented. It is one of the biggest Australian things, I'd say. And next to that, they also are incredibly animal loving. So by creating a community in each city that we're based in and them seeing the impact this has on the animals, I think that's what most people love to go and to attend, and it is something that's positive both for the animals and for themselves. Our main communities are actually based in South Eastern Queensland as well as Perth and Adelaide.
6: Tia Maria batati hai ki puppy yoga ke liye aane wale log kai prakar ki umeed lekar aate hain. Koi keval yog par kendrit hota hai to koi puppies par, lekin kuch ki umeedein alag bhi hoti hain.
7: There's a variation from experienced yogis wanting to develop, like to see a different yoga practice, and they focus mainly on the exercises themselves, but with the addition of having the animal to run around and them being able to interact. We also just have people that are actually coming more for the animal interaction perspective. But recently, for example, in a session that I've attended a few weeks ago, we actually had a family who lost their golden retriever, and it was their family dog, so they just wanted

0: wanted to have an experience and be amongst puppies, which I found like a different type of purpose that they attended to.
1: वे बताती है कि कैसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग चीजों पर ध्यान देते हैं.
0: It's not necessarily a bigger volume or less. It's just different type of people. For example, in Adelaide, that is our biggest rescue community that we have, in the sense that those are that is where we do most rescue events, where people are so involved already with charities, with like community-based efforts. So that is what we then can do more of in Adelaide. That's an example of that. On the other hand, in Southeast Queensland is the only place we've had goat yoga in, I think it was nearly a year ago, because it was more accessible for people here. So it really depends on what, well, the community itself wants.
1: जी बताती है कि पारंपरिक सेशन में खासकर नई शुरुआत करने वाले लोग एक तरीके के परफॉर्मेंस प्रेशर को लेकर के शुरुआत कर सकते हैं, जो पपी योगा में कुत्तों और बिल्लियों के होने की वजह से कम हो जाता है.
0: I would definitely think that the animals take away that type of like pressure, and it's also so important because realistically yoga and one of the most important parts of yoga and the niyamas, ahimsa, is non-violence, non-comparison, self-compassion. So that is something that by going to an animal integrated puppy yoga yoga session or puppy yoga session, in that sense you're very much leaving everything at the door and coming and focusing on the moment. You can join in, you can take a break, nothing is required of you, and you can simply like be within yourself.
1: Puppy yoga देश में तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है. ऐसे में कई शिक्षाविदों और एनिमल वेलफेयर कर्मियों की इस व्यवसाय में पशुओं को लेकर अवहेलना की चिंताएं बढ़ी हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की डॉक्टर मिया कॉब्स एक एनिमल वेलफेयर साइंटिस्ट हैं. यूनिवर्सिटी के लिए लिखे गए अपने लेख में डॉक्टर कॉब्स कहती हैं कि व्यवसाय में पाया गया है कि नन्हे पशुओं का ख्याल नहीं रखा जाता, उनके पानी खाने की उचित व्यवस्था नहीं होती, क्लास सेशनों में गर्मी रहती है और इन छोटे छोटे पशुओं को सही आराम भी नहीं मिलता. इस बारे में जब हमने टिया मारिया से बात की तो उन्होंने बताया कि
0: the preparation starts way before the session itself. So it includes making sure that the studios and all the equipment used on the day are cleaned and sanitized, and for those type of things we use veterinary grade disinfectants that are specifically for animals. So that is one aspect to it. Then as well, like the fact that we're not forcing any interaction with puppies or any other animals that we come. So that is also made clear in our puppy handling rules in the beginning of each session, as well as when participants book a session. And then the puppies are free to roam around, puppies or kittens or any other animals we might have, are free to roam around and decide whether or not they want to interact. So for example, they're able to just retreat themselves to their safe space at any given point and either not interact anymore or explore different people in a class. And they always have water and food available at all times, as well as in between each session, we have a 60-minute break just to make sure that any form of socializing really comes in manageable.
1: वे आगे बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पशुओं के लिए नियम अधिक सख्त हैं.
0: Well, I really found to see a difference between how some animals are being treated here and, for example, Europe, in the sense that it is not yet as inclusive as in Europe. For example, in Australia, you have cases where if a dog displays aggression or is bitten, there will be consequences for the animal itself, rather than just kind of saying, oh, well, it's an animal, these things happen.
1: पशु कल्याण मुद्दों के अलावा एक तर्क यह भी आता है कि पारंपरिक योगा जैसे गहरे नतीजे पपी योगा नहीं दे पाता. मारिया मानती है कि ऐसा नहीं है और यह कि योग करने वाला हर व्यक्ति अलग चाह रखता है और इसलिए अलग अलग योगा अलग अलग लोगों के लिए सहज होती है.
0: First thing says, I love my yoga practice. It's something that gives back to you no matter where you are at in life and no matter what you're experiencing. It's something that you can just dip into. And I would say it's more than just the physical aspects of it. Just the fact that like your mind control, the fact that you can bind yourself with your breath to your body in such an easy and connective way. I think it's just how some people use props in yoga classes. It is a similar aspect. Like, it doesn't matter how you do something as long as you show up for yourself and you just try.
1: चाहे वजह जो भी हो और आपकी पसंद की योगा का प्रकार जो भी हो, दुनिया भर में लोग योग को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए और अधिक पसंद कर रहे हैं। ऐसे में हमें जरूर बताएगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी सामान्य है और प्रस्तुत विचार निजी हैं। SBS ना ही उनसे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। इस रिपोर्ट को आपके लिए SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने।
2: समय हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन मेरे पास योगेंद्र जी का संदेश आया है जो कह रहे हैं हाय वी, क्षमा कीजिएगा एक सेकेंड। हाँ जी, वे लिखते हैं हाय विजय, हेलो, could you please play Desi Girl by Sunidhi Chauhan? This song reminds me of my first visit in Australia when my Desi Girl was in India eagerly waiting for me, dedicated to Meghna. तो मेघना जी के लिए हम ये गीत आपकी तरफ से जरूर बजाएंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए SBS हिंदी पर, मैं आपके फरमाइशी गीत लेकर के जरूर आऊंगी। आज चला रहे हैं हम सुनिधि चौहान के नाम की गीतों की रेलगाड़ी। 04397997 हमारा नंबर है।
3: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
4: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayuno, empacar los lonches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia, llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue latiendo.
5: Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
8: Mom, please.
7: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
8: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
7: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
8: Wow, you weren't kidding, Mom.
7: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
8: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
7: No, the other one.
8: What's in your wallet?
7: Oh, that's my boy.
9: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
2: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। और आइए अब आपकी SBS फ्लैशबैक के सेगमेंट में मुलाकात करवाते हैं डैरिल अलेक्जेंडर से, जो कैनबरा में स्थित एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। हमने पिछले साल इनसे बात की थी और तब उनकी उम्र 70 वर्ष की थी, तो आज वे 71 वर्ष के हैं और वो अब भी लोगों को योगा सिखा रहे हैं। तो ये, और खासकर तब जब इस साल के इंटरनेशनल डे फॉर योगा की थीम ही है हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो आइए बात करते हैं डैरिल अलेक्जेंडर के साथ, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।

साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, एक दिन जो भारत की इस प्राचीन परंपरा को वैश्विक पहचान देता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में घोषित इस दिवस का उद्देश्य है योग के जरिए मानसिक और शारीरिक संतुलन को प्रोत्साहन देना। इस वर्ष की थीम एक धरती एक स्वास्थ्य इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति और समाज का स्वास्थ्य परस्पर जुड़ा है। इसलिए योग सप्ताह के अवसर पर SBS हिंदी आपके लिए लेकर आया है एक विशेष संवाद। कैनबरा के अयंगर योगा में वरिष्ठ प्रशिक्षक डैरिल अलेक्जेंडर के साथ करीब 2 दशक से योगा का अभ्यास कर रहे डैरिल 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और इस आयु में भी न केवल वे स्वयं योग करते हैं बल्कि दूसरों को भी सिखाते हैं। आज डैरिल से समझेंगे कि योग कौन कर सकता है और परिवार में सबको योग करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है, कैसे अपने स्वास्थ्य का

0: forever. Shuru karne se thoda time, not long period, you know. So that's it. Make it a game.
1: और बच्चों के साथ बुजुर्गों के लिए भी उनके पास एक सलाह है,
0: धीरे धीरे और आराम से करना है, और प्राणायाम और आसना प्रत्याहार, स्पेंड टाइम क्वाइटली एंड ऑल्सो स्पेंड टाइम ध्यान में बैठ के सोचना, नॉट टू इंटेंस, यू नो, स्ट्रेट अवे, एंड गो टू अ गुड टीचर, दैट्स द मेन थिंग. स्वामी शिवानंद, he is 129 this year. He still practices. Iyengar, Vikas Iyengar from Pune, he was practicing until he was 96. So there's a lot of examples of people. Vivekananda was quite old when he died, you know. So there are many examples.
1: प्राणायाम से शुरुआत करना बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है. डैरिल अलेक्जेंडर की बातें स्पष्ट करती हैं कि योग हर उम्र में हर परिस्थिति में जीवन का सहारा बन सकता है. डैरिल ने खुद बचपन से योग किया और यही नहीं, 2011 में यानी 59 वर्ष की आयु में पर्थ में प्रशिक्षण देना शुरू किया. वे कहते हैं कि अगर वे कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, बात केवल अभ्यास की है.
0: International Yoga Day, it should be observed because yoga is part of Bharat's culture. International Yoga Day is a way of Bharat saying to the world, you know, it's about one family and it's about one breath, and we have something to give to the world. So if you're from Bharat, then you should observe International Yoga Day, 21st June.
1: SBS हिंदी के इस योग सप्ताह विशेष में बस इतना ही. सुनते रहिए हर आवाज एक नई सीख. इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है, अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लें. इस रिपोर्ट को आपके लिए SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने. और योगेंद्र जी की फरमाइश पर मेघना जी के लिए ये गीत.

और मेरे पास कुमार जी का संदेश है कि गुलाब जामुन के नाम से तुम और श्री एक गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज समय बहुत कम रह गया, अगली बार आपके लिए गीत जरूर लेकर के आऊंगी।

0: ना है कि यहूद दुश्मनी के बारे में खदशात मौजूद होने के बावजूद ये जरूरी है कि लोग अपने अकीदे की शनाख्त में पुरएतमाद महसूस करें। इधर ये बात जल्द सामने आ जाएगी कि माह जून के बाद ऑस्ट्रेलियन आवाम को ईंधन पर एक्साइज मिल सकेगा या नहीं। ये 3 माह की मनसूबा बंदी उस वक्त मुतारफ कराई गई थी जब अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाजे ने आबनाए हुरमुस की शिपिंग को दरहम बरहम कर दिया था। ये गुजरगाह दुनिया की कुल तेल फराहमी का 5वां हिस्सा ले जाने के लिए कलीदी रास्ता है। इसकी वजह से आलमी ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ और महंगाई के असरात के हवाले से तशवीश बढ़ गई। अब जबकि वाशिंगटन और तेहरान ने तनाजे के खात्मे और आबी रास्ता दोबारा खोलने के लिए एक फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया है, वजीर आजम एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि हुकूमत ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला करेगी कि क्या मुस्तकबिल में इस आसानी की जरूरत है या नहीं।
1: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
0: जबकि इस हफ्ते मुल्क भर में महाजरीन का हफ्ता मनाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में नए घर पाने वाले अफराद इस बात पर गौर कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सफर के चैलेंजेस का कैसे सामना किया। निबाहिद एशो एक इराकी महाजर हैं जो साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी जब उन्होंने इराकी शहर मूसल को तर्क किया था। वो कहती हैं उनका घर जला दिया गया था और वो अपने खानदान के साथ इराक को छोड़ने पर मजबूर हुई ताकि वो महफूज रह सकें। SBS अरबी से बात करते हुए एशो कहती हैं कि उन्होंने बतौर हाजिर अपने तजर्बात का इजहार करने के लिए फन और मुसव्वरी का सहारा लिया। इधर ऑस्ट्रेलिया में खालिस बैरून मुल्क हिजरत तकरीबन 3 सालों में अपनी कम तरीन सतह पर आ गई है। महकमा शुमारियात का कहना है कि ये साल 2025 में सिर्फ 3 लाख से ज्यादा थी, जो पिछले 12 माह के मुकाबले में तकरीबन 9% कम है। नेट समंदर पार हिजरत ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों के लिए आने वाले और मुल्क छोड़ने वालों की तादाद के दरमियान फर्क की पैमाइश करती है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2025 में 1.5% बढ़कर 27.8 मिलियन हो गई, जिसमें एक बार कुदरती इजाफा भी शामिल था। ट्रेजरर जिम चालमर्स का कहना है कि जब लेबर ने हुकूमत संभाली तो हिजरत बढ़ रही थी, लेकिन अब इसमें काफी हद तक कमी आई है। सामईन आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर जुमा 19 जून 2026 का हफ्ता रफ्ता और मैं हूँ वर्दा वकार। जी सामईन आप सुन रहे थे हफ्ता रफ्ता जिसमें हमने ये जाना कि दुनिया भर समेत ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता हफ्ता खबरों में कैसा रहा और कौन कौन से अहम वाकयात पेश आए। और यहाँ अब ये याद दहानी जरूरी है कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे साउथ एशियन पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। उसके अलावा आप SBS उर्दू को तलाश कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी मौजूद है SBS उर्दू और यूट्यूब पर भी अब SBS उर्दू को देखा और सुना जा सकता है। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में सुनिए। उसके अलावा SBS के यूट्यूब पर आपको कुछ दवील दौरानिए की लेकिन दिलचस्प वीडियोस भी मैसर आएंगी। आप इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स देख सकते हैं जो सेलिब्रिटीज की हैं, कुछ फनकारों की हैं, अदाकारों की हैं या इन्फ्लुएंसर्स की हैं जो SBS उर्दू से कुछ बात कर रहे हैं या अपने सुनने और देखने वालों को कोई पैगाम दे रहे हैं। इसी तरह के पैगाम आप भी दे सकते हैं। SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर जाइए और हमें पैगाम भेजिए कि आपको नशरियात में क्या कुछ पसंद है, कैसी मौसीकी आप सुनना चाहते हैं और वो कौन से मौजूआत हैं जिनका SBS उर्दू अहाता करे, वो कौन सी मुनफरिद कहानियां हैं जो आपकी दिलचस्पी का बायस हैं, या अगर आपके अपने पास कोई बहुत मुनफरिद या अछूती कहानी है तो वो भी आप SBS उर्दू से शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हो चला है कि हम नशरियात में शामिल करें कुछ मौसीकी। आपको सुनवाते हैं और का चल दिए तुम कहाँ।

0: जी सामीन, तो गीत आपने सुना और अब हम चलेंगे नशरियात के पहले कमर्शियल ब्रेक की जानिब। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि CVE कैसे काम करता है और इंसदाद दहशतगर्दी ऑस्ट्रेलिया में कैसे नाफिज किया जाएगा SBS एग्जामिन की एक किस्त में। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: ऑस्ट्रेलिया के पास मेन चीज है कि हमारे पास है मटेरियल, आप कह रहे कि माइनिंग और बाकी जो है कुछ, तो इसमें हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो मेन थिंग ये फर्स्ट थिंग मिनरल्स में आप प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो उसके लिए है यू नीड टू हैव यू सी मोर रिसर्च ऑन दिस वन कि कैसे हम इसको ज्यादा प्रोसेस कर सकते हैं. आपको पता है पहले भी है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है कि वो मतलब है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए जो है ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स को है नीड टू वर्क ऑन दिस वन कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहते हैं? अब हमें पता है कि वेरी एक्सपेंसिव है, लेबर फोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग जो है इट कुड बी मोर व्हाट दे कॉल इज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. When is, जब इसको कहते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब यह है कि आपको कोई ऐसी एफिशिएंसी होनी चाहिए सिस्टम में तो आपके प्रोसेस अच्छी हो सके हैं. फिर हमारी जो लेबर फोर्स जो है उसको भी स्मार्ट होना चाहिए. यूरोप के अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग जो है, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल आप देखें जी के जर्मनी है, फ्रांस है, व्हाट दे आर बेटर, उनका जो सिस्टम है उनका बेहतर है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया. तो वो नीड टू लर्न फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग विद यूरोप, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में. है जी,
2: ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ऑस्ट्रेलिया में मुकामी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने, सप्लाई चेन्स को महफूज करने और हाईटेक इंडस्ट्रीज को फरोग देने पर जोर दिया जा रहा है. होराइजन यूरोप में शमूलियत इन तमाम अहदाफ को आलमी सतह पर जोड़ने का एक जरिया बन सकती है, लेकिन इसके असरात सिर्फ सनत तक महदूद नहीं रहेंगे. माहिरीन के मुताबिक इस तरह के बैन अलावी तहकीकी रवाबित बराह रास्त तालीम, खासतौर पर स्कूलिंग और रियाजी और साइंस की तालीम पर भी असरअंदाज होते हैं. ऑस्ट्रेलिया में हालिया बरसों में तलबा की कारकर्दगी खासतौर पर रियाजी के शोबे में एक बहस का मौजू रही है. ऐसे में यूरोपी तालीमी और तहकीकी इदारों के साथ शराकत दारी न सिर्फ आला तालीम बल्कि स्कूल लेवल पर भी मुस्बत तब्दीली ला सकती है.
1: देखिए उसके लिए हमें जरूरत पहले उससे थोड़ी सी और भी चीज है, थोड़ा सा लोअर लेवल पे आना लगे कि हमारे स्कूल जो है ऑस्ट्रेलिया में उसमें लोगों की जो वर्क फोर्स जो बाद में आनी है वर्कशॉप, उस लोअर लेवल पे भी आपको थोड़ी सी जरूरत है कि हमारे स्कूलों में कैसे जो है लोग ऐसे मतलब उसमें मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह चीजें ज्यादा आए ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग जो जो फोर्स जो है वो भी बेहतर हो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा जो है मेन चीज फर्स्ट है, क्योंकि हमें पता ही है यहाँ पे मिनरल जो है बेटर, तो उनको हम यूज कर सकते हैं आगे उसको प्रोसेस करके. तो दे यूरोप को फिर भी बेटर कि उनको होगा मोर रिसोर्सेज, उनको अपना मिनरल. लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाहे उनको चाहिए कि ये उनको प्रोसेस करें और ले. ऑस्ट्रेलिया शुड लर्न दिस थिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज कि वो कैसे वो काम करते हैं उसमें, क्योंकि अभी जो है इस नाम पे है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनके अपने रिसोर्सेज जो है मतलब मिनरल जो है दे आर जस्ट शिपिंग आउटसाइड. Why not to मतलब यूज तो मतलब रिसोर्सिस को यहीं पे, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि जो उनकी मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसिंग है और उनकी मैनुफैक्चरिंग जो है वो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया शुड बी टू लर्न एंड ऑस्ट्रेलिया शुड लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो इस ये हमें पता ही है हमें कि यूरोप जो कंट्रीज जो है अब इस बेटर देन मतलब यूरोपियन उनकी मैनुफैक्चरिंग जो है ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वन.
2: ऑस्ट्रेलिया की होराइजन यूरोप में शमूलियत को एक ऐसे कदम के तौर पर देखा जा रहा है जो तहकीक, सनत और तालीम तीनों शोबों को एक साथ आगे बढ़ा सकता है.
1: इसमें स्पेशली एक और चीज है वो मैथमेटिक्स, जिसके लिए अब जो है ना बहुत जरूरत है कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी अपना स्कूल्स में है उन पे ज्यादा एम्फेसिस होने चाहिए मैथमेटिक्स में. तो ये है कि थोड़ा सा लोगों को लो लेवल पे शुरू होना चाहिए कि मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कैसे जो है हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेटर ऑन हमारी जो जिसको कहते हैं AI आ रही है दूसरा जो है उसमें यह है इट इज ऑल अबाउट लॉजिक अबाउट थिंग्स लाइक दैट. It will be all, you see, based on mathematics. So, need to have a bit more mathematics in school. हाँ, एक और चीज में slightly different अगर आप मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि अगर आप देखें कि supply chain, अगर आप देखें क्या हुआ इसमें जो वॉर में, कि इसमें वॉर अगर आप देखें कि प्रॉब्लम क्या हुआ सबसे ज्यादा

0: Australia need to look at this one, not just looking at supply chain routes or sources, but look at the smart system. कि कैसे हम जल्दी चीजें कहां से चेंज हो सकती हैं.
1: ये रिपोर्ट आपके लिए शादी खान सैफ ने पेश की थी.
2: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए. फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए. फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.
3: जी सामईन, इसके साथ ही वक्त हो रहा है नशरियात के तीसरे और आखिरी कमर्शियल ब्रेक का. लेकिन वक्फे के बाद गुफ्तगु सुनवाएंगे आपको कि कैसे पाकिस्तानी नजाद आलिया जावेद रहमानी फुटबॉल के जरिए अपने ख्वाबों की तकमील कर रही हैं. तो हमारे साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं.

0: The Bollywood Session on SBS South Asian.
1: SBS Audio.
2: अपनी वेवलेंथ नाल मेल खांदी तरंगा सुनन लई प्ले बटन दबो.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
2: फिलहाल ही सट तो वट भाषावां विच खबरां भी. तुहाडे मूड नाल मेल खांदा संगीत अते मनमोहक पॉडकास्ट भी जो तुहाडी उडीक कर रहे ने. SBS Audio ऐप डाउनलोड करो.
1: SBS.com.au/audio